दुख आनंद नाम रसु हरसंति मंगल गाया सफल दर्शन पेट्यो गुरु नानक ता मन तन हर हर ते आया सुही महला पंजवा करम धर्म पखंड जो दिसै तिन जम जागति लूटै निर्वाण कीर्तन गावहु करते का निमक सिमरत जित छूटै संत हो सागर पारे उतरिया जे को बचन कमावे संतन का सो गुरु प्रसादी तरिया रहाओ कोट तीरथ मजन इशनाना इस कल में मैल परी जय साध संग जो हर गुण गावे सो निर्मल कर ली जय वेद कतेब सिमरत सब शास्त्र इन पढ़िया मुक्त न होई एक अखर जो गुरमुह जापै तिसकी निर्मल सोई खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चवणा को सांझा गुरमुख नाम जपै उदरै सो कल मैं कट कट नानक माजा सुई महला पंजवा जो किश करै सोई प्रमाने ओ राम नाम रंग राते तिनकी शोभा सबनी थाई जिन प्रभु के चरण पराते मेरे राम

आस चुकाई मेरे राम राय तुद चित आये उभरे तेरी टेक पर वासा तुमरा जप नाम तुम्हारा उधरे रहाओ अंधकूप ते काड लिए तुम आप पै किरपाला सार समाल सर्ब सुख दिए आप करे प्रतिपाला अपनी नदर करे परमेसर बंधन काट छड़ाए अपनी भगत प्रवे आप कराई आपे सेवा लाए परम गया पै पै मोह बिनासे मिटिया सगल विसूरा नानक दया करी सुख दाते पेटिया सतगुर पूरा सूही महला पंजवा जब कछ सीओ तब क्या करता कवन कर्म कर आया अपना खेल आप कर देख ठाकर रचन रचाया मेरे राम राय मुझते कछु ना होई आपे करता आप कराए सर्ब निरंतर सोई रहाओ गणती गणी ना छूटे कत हूं काची देह एयाणी कृपा करो प्रभ करने हारे तेरी बख्श निराली जी जंत सब तेरे कीते कट कट तू ही ते आई है तेरी गत मित तू है जान है कुदरत कीम ना पाई है निर्गुण मुगद अजान अज्ञानी कर्म तर्म नहीं जाना दया करो नानक गुण गावे मिठा लगे तेरा पाना सोही महला पांजवा भाग ठड़े हर संत तुम्हारे जिन कर तन हर नामा परवान गणी से ही यह आए सफल तिना के कामा मेरे राम हर जन के हों बल जाई केसा का कर चवर टुलावा

सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर गम अगम अपारा सब त्यामे तुझ।

जी सब दुख विसार नहारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरा

ब्रह्मा ज्योतियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताए हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सेवकन गो सेवकन सुख दियो सत्रन गो बल मोबद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर बशानत चीटी ते कुंचर या स्थूला सपर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछन घट घट के बट बट की जान जबद करख करा कर तारा प्रजा तरत तब देहे अपारा जब आ करख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देहे तर सब हूँ जेते बदन शष्ट सब तारा आप अपने बूझ उचार है तुम

ताका मूढ़ उचारत भेदा जाको भेवना पावत बेदा ताको कृपाहन अनुमानत महामूढ़ कश भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तोय तेती तुमरा लखा न जाहे पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप सरूपा रंग भयो राव कही पुपा अंडज जेरज से तज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हव बैठा कहूं सिमड़ पयो संग्री कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आजुगा स्वरूप स्यंभव अमरच्छा मेरी तुम करो सिख उबार आसिक संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सगल मलेश करो रणगाता जे अस तुझताव शरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हावै मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सबटारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट न है अरछा हुए ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दुष्ट तन जाहे ने हर हो ताके ताप तनक मैं हर हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छ शव सके न कोई

तू मन मेरे दुख सब विसारना, अंगीकारों करे तेरा कार्ज सब सवारना, सबना गल्ला समरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रह हर नाले, साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा है, करता तेरा सब कुछ है जिस दे सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे, काह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया कर सात सुखमन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिठो जिस दियां ए वडियाइया, कह नानक सुनो संतो शब्द रो प्यारो साचा नाम मेरा आधार। वाजे पंच शब्द घर सभागै, घर सभागै शब्द वाजे, कला जित कर धारिया पंच दो तुदवास कीते, काल कंटुक मारिया तुरगर्म पाया तुद जिन काओ, से नाम हर के लागे, कह नानक तै सुख होवा तितगर अनहद वाजे, आनंद सुनो बडभागी हाओ सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप तुरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भये सरसे पूरे गुरते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे आभरपूरे, बिनवंत नान गुर चरण लागे वाजे अनहतूरे, मुदामणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो, आमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब आधारो, जे को खावै जे को पुंचै तिसका हुए उधारो, ए वस्त जी नह जाई निद निद्रा गुरधारो, तम संसार चरण लग तरिया

इन्हीं सेवा प्रदान कर लीजिए, कीर्तन करते हैं प्रहलाद आपके पक्ष में। भाई लखविंदर सिंह जी आप जी ने पितृबाणी राही कथा राही जोड़न गए, उन्होंने पास प्यार से सरन करो जी। धन धन साहब श्री गुरु रामदास महाराज जी के प्रकाश दिहाड़े कल दे रोज़ हैं, कल अमृत वेले के विशेष दीवान साज रहे हैं, अमृत वेले नाम सिमरन होंगे, चार बजे तक नाम सिमरन संगतान हो, चार तो पांच कीर्तन रूप से नाम सिमरन हो, पांच बजे असल वार कीर्तन प्रारंभ होंगे, पौने छे महाराज सवारी आएगी, फुलों की वर्खा सवैये पड़े जाएंगे, हरिमंदर साहब की तरह प्रकाश होगा छे बजे तक। आप जी ने सारे दवानों चाह जी परनिया जी।

जप पूरन होई आसा। बिलावल महला पंजवा, ताती वाव न लग गई पार, ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारे रामकार, दुख लगे न पाई सतगुर पूरा भेटिया, जिन बणत बनाई राम नाम औखदिया, एका लिव लाई रहाओ, राख लिए तिन रखन हार, सब व्याध मिटाई कहो नानक कृपा पही, प्रभ पय सहाई। सलोक जय साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत, ना हो ना तूण है छुट है, निकट न जाई हो दूत। सलोक महला पंजवा, मन में चितवो चितवनी, उदम करो उठनीत, हर कीर्तन का आहारो, हर देहो नानक के मीत। सोहेला राग गौड़ी दीप की महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जय कर कीरत आखिए, करते का हो विचारो, तित कर गाओ सोहेला, सिवरो सिरजन हारो, तुम गाहो मेरे निर्भव का सोहेला, हवारी जित सोहेला, सदा सुख होए रहाओ। नित नित जेड़े समालियन, देखेगा देवनहार, तेरे दाने कीमत ना पवै, तिस दाते कवन सुमार। संबत साहा लिखिया, मिलकर पाहो तेल, देहो सज्जन असिसड़िया, ज्यो हो वै साहिब स्यो मेल।

गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु

सतगुर प्रसाद हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत शाड बिखे बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यो प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहे मलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर राम दास राखो सरनाई गुर अमर हो गुर रामदास ज्योति ज्योत जुगावन हारा शबद सुरत गुर सुख होए अनहद बाणी निचार तारा तख्त बख्त प्रगट पहारा हर की वडियाई हो आख ना साका हो मूर्ख मुगदनी जान जन नानक को हर बख्सलै मेरे स्वामी सर नागत

Sassari, बाणी भगत कबीर जी की, एक ओंकार सात गुर प्रसाद, सनक सनंद महेश समाना, सेख नाग तेरो मरमना।

का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे साध संग जी, आप संगतां ने अमृत वेले तो साहबां दे प्रकाश दड़े मनाउंदिआं होइआं गुरु घर हाजरियां लवा के गुरबाणी कीर्तन नाम सिमरन नाल जुड़ना कीता, कथा विचारां सरवण कीतियां हन। सतगुरु साहब जी रहमत कारण समुची सेवा निभाउंदिआं होइआं भुल चुक दी खिमा बख्शन, आप संगतां दी दर हाजरी प्रवान करन। सब संगतां नूं साहिबां दे प्रकाश दिहाड़े दी लख लख वधाई होवे जी। इत्थे अमृत वेले दीवानां दी संपूर्णता है। शामां दे दीवानां विच फिर जो विशेष तौर ते सब तों पहला श्री खंड पाठ साहिब दी संपूर्णता होनी है, फिर कीर्तन दरबार कथा विचारां होणियां हन। सब संगतां ने समें सिर हाजरी भर के लाहा लैणा जी।

आपे सजे सब कर लहे सो सच रहया सवाई नानक नाम बिना कोई किश नाही नामे दे वडाई मलार महला तीजा हमें बेखा मन मोहा मोहल दिया अज घर बारी गरण शब्द मुकवाया हमें बेखर मारी मन रे हमें मोह दुख पारी ए भव जल जगत ना जाई धरना गुरमुख तर हर तारी रहो त्रै गुण माया मोह बसारा सब वरते आकारी तुरिया गुण सत्संगत पाइये नदरी पार उतारी

0: जग विस्तार कृपा कृपा कर ठाकर मेरे हर हर हर हर तार नानक सतगुर पूरा पाया मन जपया नाम रार मलार महला तीजा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद ए मन गिरि के ए मन उदासी कि ए मन अवरन सदा अविनाशी
1: के ए मन चंचल के ए मन बैरागी इस मन को ममता किथों लागी पंडित इस मन का करो हो विचार अवर के बहुता पड़े उठावे पार रहाओ माया ममता करते लाई एहो हुकम कर श्रेष्ठ उपाय गुर प्रसादी बुझो पाई सदा रहो हर की शरणाई सो पंडित जो तेहा गुणा की पंड उतारे आंदन एको नाम बखाने सतगुर की ओ देखिया ले सतगुर आगे सीस तरे सदा अलग रहे निर्वाण सो पंडित दरगाह प्रवान सबना मैं एको एक वखाण जा एको वेखै ता एको जाने जां को बक्से मेले सोय एथे ओथे सदा सुख होय कहत नानक कवन विद करे क्या कोय सोई मुक्त जा को कृपा होय आंदिन हर गुण गावै सोय शास्त्र वेद की फिर कूक न होय मलार महला तीजा प्रम प्रम जोन मन मुख परमाई जमकाल मारे नित पवै नित पत गवाई जमकाल मारे नित पत गवाई सतगुरु सेवा जम की कान चुकाई हर प्रभ मिलिया महल घर पाई प्राणी गुरमुख नाम त्याय जन्म पदार्थ दुबदा खोया कौडी बदले जाय रहाओ कर किरपा गुरमुख लगे प्यार अंतर भगत हर हर उर धार पवजल शब्द लंघावन हार दर साचे दिसे सचियार बहु कर्म करे सतगुर नहीं पाया बिन गुर भरम भूले बहु माया होमे ममता बहु मोह वधाया दूजे पाए मन मुख दुख पाया आपे करता अगम अथाह गुर शब्दी जपिए सच लाहा

जिन कल राखे मेरे हमें अवगुण परे एक गुण नाहे अमृत छाट बिखै बिख खाहे माया मोह परम पै भुले सुत दारा सो प्रीत लगाए एक उत्तम पं सुनियो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाए एक अरदास पाठ कीरत की

मन मुख अंध न चेत ही डूब मुए बिन पानी मन रे सदा पजो हर सरणाई गुर का शब्द अंतर वसै ता

सतगुर सेव सदा सुख पाया, ज्योति जोत मिलाई। सतगुर की सेवा अत सुखाली, जो इच्छा सो फल पाए। जात सत तप

जो सतगुरु की शरणागति हो तिनकै बल जाओ, दर सच्चे सच्ची वड़ियाई सहजे सच समाओ। नानक नदरी पाइए गुरमुख मेल मिलाओ, श्री राग महला तीजा। मनमु करम कमावणे ज्यो दुहागण तन सिगार, सेजै कंतन आवई नित नित होए

सत संगति सदा मिल रहे सच्चे के गुणसार दुबदा मैल चुकाइयन हर राख्या उतार सच्ची बाणी सच मन सच्चे नाल प्यार मन मेरे होमे पै मैल पर नाल हर निर्मल सदा सुहना शब्द सवारण हार रहाओ सच्चे शब्द मन मोह

अध्यात्मी हर गुण तास मन जपै एक मुरार तिनकी सेवा धर्म राय करे तन सवारण हार मन के विकार मनह तजे मन चूके मोह भ्यास अभिमान आत्म राम पछाणिया सहजे नाम समान बिन सतगुर मुकत न पाइए मन फिरे दीवान शब्द न चीने कथनी बदनी करे बिख्या माहे समान सब के चापे आप है दूजा अवर न कोए ज्यों बुलाए त्यों बोलिए जा आप बुलाए सोए गुरमुख बाणी ब्रह्म है शब्द मिलावा होए नानक नाम समाल तू जित सेवे सुख होए श्री राग महला तीजा जग होमे मैल दुख पाया मल लागी दूजे पाए मल होमे धोती उतरे मल होमे धोती किवें ना उतरे जेसो तीर्थ नाए बहुविध कर्म कमाम दे दूनी मल लागी आए पढ़े मैल न उतरे पूछो ज्ञानियां जाए मन मेरे गुरसरण आवै ता निर्मल होए मनमुख हर हर कर थके मैल न सकी तोए रहाओ मन मैले भगत न होवई नाम न पाया जाए मनमुख मैले मैले मुए जासन पत गवाए गुर प्रसादी मन बसै मल होमे जाए समाए ज्यों अंधेरे दीपक बालिए त्यों गुर ज्ञान अज्ञान त जाए

जैसे प्रवान है जिन गुर मिले अस भाए सच्चे से तीरत्या दरगह बैसन जाए करते हाथ वड्याइया पूर्व लिख्या पाए सच करता सच करण हार सच साय सच टेक सचो सच बखाणी है सचो बुद्ध विवेक सर्व निरंतर रव रया जम नानक जीव एक श्री राग महला पंजवा गुर परमेश्वर पूजिया मन तन लाए प्यार सतगुर दाता जी का सबसे दे आधार सतगुर वचन कुमावणे सच्चा ओ विचार बिन साध

जैसे मन आए घर महल सच समाये जम काल न सके खाए नामा छिबा कबीर चुलाहा पूरे गुरते गत पाई।

सारे अनाथ को नाथ है सब के साथ है। जप जुए जन्म ना हारिए नानक की बेनंती प्रभ कृपा कर पाओ जल तारिए डखना।

हर एक से हर एक सहदा अमर एक हर चित धर हर तिस बिन कोई नाहे डर भरम बहुत दूर कर हर तिस नू सलाह है जो तुद रखे बाहर कर हर जिस नू ए दयाल सो हर जप पहो बिकम तर श्लोक महला पहला दाती साहब संधिया क्या चले तिस नाल एक जगां दे ना लहण एक सुत्या दे उठाल महला पहला सिदक सबूरी साधका सर्व तुसा मालायका दीदार पुए पाए सा था हो नाही खाए का बौड़ी सब आपे दुध पाए के आप कारे लाई तू आपे आप विकसदा अपनी वड्याई हर तुदे बाहर कुछ नहीं तू सच्चा साई तू आपे आप वरतदा सभी सबनी ही थाई हार तिसे त्यावो संत जिनो जो लै छड़ाई श्लोक महला पहला।

पापी तरया। उस अंतर नाम निदान है ना मो परवरया, ना पूजिए ना मनिए ना एक विक सब हिरया। जिनी नाम ते आया एक मन एक चित से अस्थिर।

कुंडल जब आछत उर्द ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पाद मदना अहनस एक ज्ञान सो नागा ते दिन सम्मल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारिया गर्भ छोड़ मित्र।

काम पावस मदहानी ताते बिखे पही मत पावस काया कमल कमलाना अवगत बाण छोड़ मृत मंडल तो पाछे पछताना।

0: सुंदर सोहने साध संगत जिन बैसने हर तन जिनी साचया से की कह गंभीर पार जियो हार अम्यो रसने पाइए मुँह डिठे तिनके जीविए कार्य साब सुवार ले नित पूजे गुर के पाव जियो हा जो हर कीता अपना तिसे गुसाई जपना सो सूरा प्रधान सो मस्तक जिसके भाग जियो मन मदे प्राव अवगाइया ए रस भोगन पात छाइया मंदा मूल न उपजियो तरे साची कारे लाग जियो करता मन विसाया जन्म का फल पाया मन पवंधा कंत हार तेरा थिर हुआ सुहाग जियो अटल पदार्थ पाया पै भंजन हर सुनाया लै आंचल नानक तारियन जिता जन्म अपार जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद बाज बल्ला पंजमा घर तीजा हार जपै जप धीरे रहो सिमर सिमर गुरदेव मिट गह पै दूरे सरन आवै पार ब्रह्म की ता फिर काहे न चूरे चरण सेव संत साधकै सगल मनोरथ पूरे कट कट एको वर्तदा जल थल मैयल पूरे पाप नस सेव्या पवित्र संतन की धूरे सब छोड़ी खसम आप हार जप भई तरुए करता क्यात पाप सो दोष्ट मुगे होए मुगे नानक रत्ता सच नाए हार वेखे सदा जूरे मा बारा महामाज महला पंजमा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किरत कर
1: और ग्राब हो रहा बेत कबीर सेवा को दो पल एक एक संत एक राम राम जुदा ता मुक्त को संत जपावे राम कबीर जे मार्ग पंडित गए पाशा परि बहीर कब घट घटी राम की तेह चढ़ रहे कबीर कबीर दुनिया के धोखे मुआ चालत गोल की कान तब गोल किसका लासी जाबले तरे मसान कबीर डूब गिरे बापरे बलोगन की कान परोसी गए जो हुआ तो अपने बेजान कबीर भले मधुकरी नाना बिद गुनाज दवा काहू को नहीं बड़ा देश बड़ राज कबीर दाव दाजन होत है निर्दाव रह निसंक जो जन निर्दाव रह सुगंध सुगन इंद्र सो रंक कबीर पाल समूहा सरवर पहरा पी न सके कोई नीर भाग बड़े तै पायो तू पर पियो कबीर कबीर प्रभाते थारे खिस है त्यो खिस शरीर ए दो अखर न खिस है जो सोगर ओ कबीर कबीर कोठी काट की दह दिस लागी आग पंडित पंड जल मुए मूर्ख उबरे भाग कबीर संसा दूर कर कागत दे बहाय भवन कर सोध कैर चरणी चित लाए कबीर संत ना छड़े संत जो कोटक मिले संत मैला गुर पंजंग बेड़ियो ता शीतलता नत जंत कबीर मन शीतल पाया पाया ब्रह्म ज्ञान जो ज्वाला जग जा रिया सो जन उदक समान कबीर सारी सृजन हार की जन नाही कोय कह जाने अपन तहनी कह दास दीवानी होए कबीर भाली भाई सो पहो परया दसा गई सब भूल उरागर पानी पाया जाए मिलो ढाल कूल कबीर अतूर सकेल कै प्रिया बांधी देह दिवस चार को पेख नांत के की खेह कबीर सूरज चांद कै उदय भाई सब देह गुरु गोबिंद के बिन मिले पट पाई सब खेह जय अन पोत पै नही जय पोत अर नाहे को कबीर विचार कै संत सुनो मन माहे कबीर जनू कुछ जानया नहीं तेन सुख नींद बहाए हम जो पूजा पूजना पूरी परी बलाए कबीर मारे बहुत पुकारया पीर पुकारे और लागी चोट ब्रह्म की रहो कबीर ठौर कबीर चोट सहेली सहल की लागत ले सास चोट सहारे शब्द की दास गुरु मैं दास कबीर मलम नारे क्या चढ़े ਸਾਈ ਨਬਾਰਾ ਹੋਏ ਜਾਗਰ ਤੂੰ ਬਾਂਗ ਦੇ ਦਿਲ ਭੀਤਰ ਜੋਏ ਸੀ ਖੁਸ਼ਬੂਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹਜ ਕਬ ਜਾਏ ਕਬੀਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਲ ਸਾਹਬਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋ ਕਾ ਖੁਦਾਏ ਕਬੀਰ ਅਲ ਕਬੀਰ ਅਲ ਕੀ ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਜੇ ਸਿਮਰਤ

डरा जे सप्रीत न जाए प्रीतक तिजो बन प्रीत बिन सुग कुमलाए ब्रीत चिंत कटोला वाण दुख बिरले बिरह विसावण लेफ एहो हमारा जीवन तू साहब सच्चे वेख बिरह बिरह किए बिरह तू सुल्तान प्रीता जित तन बिरहो न उपजे सो तन जान मसान प्रीताए वे सुगंधला तनिया खंड लिवाड़ कराहे दे रह गए करा दी गए उजाड़ प्रीता चार गवाया हंड कह चार गवाया सम लिख रब मंगेसिया तू आहो केर कम प्रेद दर दरवाजे जाए कै जोक जोड टुकड़िया हाल एहो दोसा मारिया हम दोसा दा कै हाल घड़िया घड़िया मारिया पहरी लै सजाए सोहेड़ा कड़िया हाल जो दुखी रहन विहाए बुढ़ा हुआ सिख प्रेद कंबल लगी देह जे सो वरिया जीवना पी तान हो सी खेह प्रीदा बार पराया बैसना साई मजना देह जे तू वे रख सी जियो श्री रोलेह कंधो हाड़ सिर करना वणक सर लोहार प्रीदा हो लोड़ी सो अपना तू लोड़े अंग्यार प्रीदा एक ना टागला एक ना नाही लोन अगे गए सियाप सन झोटा खासी कौन पास दमामे सत सिर फेरो छी रड जै सुत जीराण मैथी अति मांगड प्रीता कोठे

पाप पुन बीज की पोट, काम क्रोध जी मह चोट, नाम विसारे चले मन खोट, सच गुर की साची सीख, तन मन शीतल सच परीख, जल पुराण रस कमल परीख, शब्द रते मीठे रस ईख, हुकम संजोगी गढ़ दस द्वार, पंच वसै मिल जोत अपार, आप तुले आपे वणजार, नानक नाम सवारण हार, गौड़ी महला पहला, जातो जाए कहां ते आवे, कहे उपजे कहे जाए समावे, क्यों बाध्यो क्यों मुक्ति पावे, क्यों अविनाशी सहज समावे, नाम हृदय अमृत मुख नाम, नर हर नाम नर हर निःकाम, रहाओ सहज आवे सहज जाए, मन ते उपजे मन मह समाए, गुरमुख मुक्तो बंध न पाए, शब्द विचार छूटे हर नाए, तरवर पंखी बहु निस बास, सुख दुखिया मन मोण मोहो विनाश, साज बिहाग तक है अगास, तह दिस ताव है कर्म लख्यास, नाम संजोगी गोयल थाट, काम क्रोध फूटे बिख माट, बिन वखर सुनो कर हाट, गुर मिल खोले बजर कपाट, साध मिले पूर्व संजोग, सच रहस पूरे हर लोग, मन तन दे लै सहज सुभाए, नानक तिनके लागो पाए, गौड़ी महला पहला, काम क्रोध माया महचीत, झूठ विकार जागे हित चीत, पूंजी पाप लोभ की कीत, तर तारी मन नाम सुचीत, वाहो वाहो साचे मैं तेरी।

दिष्ट विकारी नाही भाओ भाओ आप मारे ता पाए ना हो शब्द मरे फिर मरण ना होए बिन मुए क्यों पूरा होए पर पंच व्याप रहा मन दोए थिर नारायण करे सो होए बोहित चढ़ो जा आवे वार ठाके बोहित दर गय मार सच सलाही धन गुरद्वार नानक दर घर एक कार गौड़ी महला पहला उल्टियो कमल ब्रह्म विचार अमृत धार गगन दस द्वार तिर भवन बेदया आप मुरार रे मन मेरे भरम ना कीजै मन मान्या अमृत रस पी जय रहाओ जन्म जीत मरण मन मान्या आप मुआ मन मन ते जान्या नजर भई कर घर ते जान्या जत सत तीर्थ मजन नाम अधिक बिथार करहो किस काम नर नारायण अंतर जाम आन मनो तो पर कर जाओ किस जाचो नाही को थाओ नानक गुरमत सहज समाओ गौड़ी महला पहला सतगुर मिले सो मरण दिखाए मरण रहन रासे अंतर पाए गर्भ नवार गगन पुर पाए मरण लिखाए आए नहीं रहना हर जप जप रहन हर सहना रहाओ सतगुर मिलै ता दुबिदा भागै कमल बिगास मन हर प्रभ लागै जीवत मरै महारस आगै सतगुर मिलियै सच संजम सूचा गुर की पौड़ी ऊचो ऊचा कर्म मिलै जमका भौ मूचा गुर मिलियै मिल अंक समाया कर कृपा कर महल दिखाया नानके हमें मार मिलाया गौड़ी महला पहला किरत पाया नह मेटे कोए क्या जाना क्या यागै होए जो तिस भाणा सोई हुआ अवर न करने वाला दुआ ना जाना कर्म केवड तेरी दात कर्म धर्म तेरे नाम की जात रहाओ तू एवड दाता देवन हार तोट नाही तुद भगत भंडार किया गर्भ न आवै रास जियो पिंड सब तेरे पास तू मार जवाल है बख्श मिलाए त्यों पावे त्यों नाम जपाए तू दाना बीना साचा सिर मेरा गुरमत गुरमत दे भरोस तेरे तन मह मैल नाही मन राता गुर बचनी सच शब्द पछाता तेरा तान नाम की वड्याई नानक रहना भगत सरनाई गौड़ी महला पहला जिन अकथ कहाया या प्यो पियाया अन पै विसरै नाम समाया क्या डरिया डर डरै समाना पूरे गुर कै शब्द पछाना रहाओ जिस नर राम हृदय हर रास सहज सुभाए मिले साबास जाह सवारै साज ब्याल इत उत मनमुख

गुरमत पाए परमानंद, जिन पाया गुर देख दिखाया, आसा महे निराश बुझाया, दीना नाथ सर्व सुखदाता, नानक हर चरणी मन राता, गौड़ी चेती महला पहला, अमृत काया रहे सुखाली, बाजी इस संसारो लब लोह लोभ मूच कूड़ कमाव है, बहुत उठाव है पहारो, तू काया मैं रुलदी देखी, ज्यों तारी ऊपर चारो, सुन सुन सिख हमारी, सो किरत कीता रहस्य।

जायत बारी। वेल पराई जो है जियड़े करे चोरी बुरियारी, हंस चलिया तू पिछे रहे एह शूटड़ होए अह नारी। तू काया रही अह सुप नंतर, तुद क्या कर्म कमाया कर चोरी, मैं जा किस लिया ता मन भला पाया। हलत न सोभा पलत न ढोई, अहला जन्म गवाया, हौ खरी दोहेली होई, बाबा नानक मेरी बात ना पुछे कोई रहाओ। ताजी तुरकी सोयना रूपा कपड़ केरे पहरा, किस ही नाल ना चले नानक चढ़ चढ़ पए गवारा। कूंजा मेवा मैं सब किस चाखिया, एक अमृत नाम तुम्हारा, दे दे नीम दवाले वसारी, पस मंदर की टेरी। संच सच न देई किस ही, अंध जाने सब मेरी। सोयन लंका सोयन माड़ी, संपै किसे न केरी। सुन मूर्ख मन अजाना, होग तिसै का।

रात अनेरी सूझ सनाही लज टूकस मूसा पाई रे मनमुख करे ते ता दुख लागे गुरमुख मिले वडाई रे जो तस की आसोई हुआ कीर्तन मेटिया जाई रे सुबर पर है ना हो वह ऊने

माई बाप कत मेक केरा किदु थावो हमाए अगन बिम्ब जल पीतर निप जय काहे कम उपाए मेरे साहेबा कौन जाने गुण तेरे कह न जानी औगण मेरे रहाओ केते रुख बिरख हम चीने केते पशु उपाए केते नाग कुली मह आए केते पंख उडाए हट पटन बिज मंदर भन्ना कर चोरी कर आवै अगों देखै पिछों देखै तुझते कहा छपावै तट तीर्थ हम नम खंड देखै हट पटन बाजारा लेकै तकड़ी तोलन लगा घट ही मह बनजारा जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते औगण हमारे दया करो किस मेहरे उपाव हो डुबदे पत्थर तारे जीड़ा अगण बराबर तपै पीतर वगै काती परवंत नानक हुक्म पछाण सुख हो वह दिन राती गौड़ी बरागण महला पहला रैन गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए नाम न जानिया राम का मूड़े फिर पाछे पछुताए रे रहाओ अनंता तान तरनी तरे अनंत न चाहा जाए अनंत कौ चहन जो गए से आए अनंत गवाए आप लिया जे मिले ता सब को पागट होए कर्मा उपर निबड़े जे लोचा सब कोए नानक करना जिन किया सोई सार करे हुक्म न जापी खसम का किसे वडाई दे गौड़ी बैरागण महला पहला हरणी होवा बन बसा कंद मूल चुन खाओ गुर प्रसादी मेरा सहो मिले वार वार हो जाओ जियो मैं बनजार न राम की तेरा नाम वखर वपार जी रहाओ कोकल हुआ अंब बसा सहज शब्द विचार सहज सुभाए मेरा सहो मिले दर्शन रूप अपार मछली हुआ जल बसा जी जंत सब सार उरवार पार मेरा सहो वसै हाओ मिलौगी बहो पसार नागन हुआ तर बसा शब्द वसै पौ जाए नानक सदा सुहागणी जिन ज्योति ज्योत समाए गौड़ी पूर्वी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीर्त आखिया करते का होए बिचारो तित कर गावो सोहिला सिवरो सिरजनहारो तुम गावो मेरे निर्भव का सोहिला हो वारी जित सोहले सदा सुख होए रहाओ नित नित जीड़ा समालियन देखेगा देवन हार तेरे दाना कीमत ना पवै तिस दाते कमन समार संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सजन आसी सड़िया ज्यों होवै साहेब स्यों मेल घर घर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन सदने हारा सिमरिया नानक से देह अवन राग गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा चौप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर मिल गया हर मेला होई आपे मेल मलावै सोई मेरा प्रभ सब बिद आपे जाने हुक्म मेले शब्द पछाने सतगुर कै पाए परम पौ जाए पैरा च सच रंग समाए रहाओ गुर मिलिया हर मन वसै सुभाए मेरा प्रभु पारा कीमत नहीं पाए शब्द सलाह अंत न पारा वार मेरा प्रभु बख्शै बख्शन हार गुर मिलिया सब मत बुद्ध होए मन निर्मल वसै सच सोए सच वसिया साची सबकार उत्तम करनी शब्द विचार गुरते साची सेवा होए गुरमुख नाम पछाणे कोए जीवै दाता देवन हार नानक हर नामे लगे प्यार गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा गुरते ज्ञान पाए जन कोए
गुरते बूझै सीझै सोए, गुरते सहज साच विचार, गुरते पाए मुक्त द्वार, पूरा भाग मिले गुर आए, साचे सहज सच समाए रहाओ, गुर मिलिया तृष्णा अग्न बुझाए, गुरते शांत वसे मन आए, गुरते पवित पावन सच होए, गुरते शब्द मिलावा होए, बाज गुरु सब भरम पुलाई, बिन नामे बहुता दुख पाई, गुरमुख होवे सो नाम तिहाई, दर्शन सच्चै सच्ची पत होई, किसनू कहिए दाता एक सोई, कृपा करे शब्द मिलावा होई, मिल प्रीतम साचे गुण गावा, नानक साचे सच समावा, गौड़ी गुआरेरी महला तीजा, सोथो सच मन निर्मल होए, सच निवास करे सच सोए, सची बाणी जुग चारे जापै, सब किश साचा यापे आपै, कर्म होवै सत संग मिलाए, हर गुण गावै बैस सोथाए रहाओ, जलो एह जेहवा दूजै पाए, हर रस न चाखै फीका अलाए, बिन बूझै तन मन फीका होए, बिन नामै दुखिया चलिया रोए, रसना हर रस चाखिया सहज सुभाए, गुर किरपा ते सच समाए, साचे राती गुर शब्द विचार, अमृत पीवै निर्मल तार, नाम समावै जो भांडा होए, उदय भांडै टिके न कोए, गुर शब्दी मन नाम निवास, नानक सच भांडा जिस शब्द प्यास, गौड़ी गुआरेरी महला तीजा, एक गावत हरे मन

गावत रह जे सतगुर भावै मन तन राता नाम समावै रहाउ। एक गावै एक भगत करे नाम न पावै बिन असने साची भगत गुर शब्द प्यार अपना पिर राख्या सदा उरतार। भगत करै मूर्ख आप जनाम है नच नच टपै बहुत दुख पाव है। नचिया टपिया भगत ना होए शब्द मरै भगत पाए जन सोए। भगत वशल भगत कराए सोए सच्ची भगत विचहों आप खोए। मेरा प्रभ साचा सब बिद जाने नानक बख्शे नाम पछाणे। गौड़ी गुआरे री महला तीजा मन मारे तात मर जाए बिन मुए कैसे हर पाए। मन मरे दारू जाने कोए मन शब्द मरे बूझे जन कोए। जिसनू बख्शे दे वड्याई गुर प्रसाद हर वसे मन आई रहाओ। गुरमुख करनी कार कमावै ता इस मन की सोजी पावै। मन में मत मैगल मिकदारा गुर अंकश मार ज्वालन हारा। मन आसाद साधे जन कोए अचर चरै ता निर्मल होए। गुरमुख ए मन लया सवार हामे विचहु तजे विकार। जोतर राखियन मेल मिलाए कदे न विछड़ शब्द समाए। अपनी कला आपे ही जाने नानक गुरमुख नाम पछाणे। गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा हौमै विच सब जग बौराना दूजे पाए भरम भुलाना। बहु चिंता चितवे आप न पछाना धंधा करत्या अंधन विहाना। हिरदय राम रमहो मेरे भाई गुरमुख रसना हर रसन रसाई रहाओ। गुरमुख हिरदय जिन राम पछाता जग जीवन सेव जुग जारे जाता। हौमै मार गुर शब्द पछाता कृपा करे प्रभ कर्म विधाता। से जन सच्चे जो गुर शब्द मिलाए तावत वरजै ठाक रिहाए। नाम नवनिध गुरते पाए हर कृपा ते हर वसे मन आए।

सेवा महली थाओ पाए, गुरमुख अंतर हर नाम वसाए, गुरमुख भगत हर नाम समाए, आपे दात करे दतार, पूरे सतगुर स्यों लगे प्यार, नानक नाम रते तिन कौ जयकार, गौड़ी ग्वारे री महला तीजा। एकस ते सब रूप हर रंगा, पौन पानी बसंतर सब सहलंगा, बिन भिन भिन वेखै हर प्रभ रंगा, एक अचरज एको है सोई, गुरमुख विचारै विरला कोई, रहाओ सहज भवै प्रभ सबनी थाई, कहा गुप्त प्रगट प्रभ बंत बनाई, आपै सुत्या दे जगाई, तिसकी कीमत किने न होई, कह कह कथन कह सब कोई, गुर शब्द समावै बूझै हर सोई, सुन सुन वेखै शब्द मिलाए, वड्डी वड्याई गुर सेवा ते पाए, नानक नाम रते हर नाम समाए, गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा। मनमुख सूता माया मोह प्यार, गुरमुख जाग्या गुण ज्ञान।

बाराम खौ खटियो पोर आनंद गाए अष्ट माल को सुख संग लाए पुन्यायो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सुत।